0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: दुनिया को जीतने की बहुत कोशिश करते हैं और इस जद्दोजहद में खुद को हार जाते हैं। भीड़ में अपनी एक अलग जगह बनाने की दौड़ में पता नहीं किसी के करीब होते हैं कि नहीं, पर हाँ, खुद से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए एक बैलेंस बनाए रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। बैलेंस अपनी पर्सनालिटी में प्योरिटी और मैच्योरिटी का।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time. Hey!
1: Culture of Punjab de chutkle, kahaniyan te saadiyan chatpatiyan gallan.
2: Aho sunde yaar roz radio te.
3: Suno saade YouTube channel Culture of Punjab te.
4: एक बहुत इंटरेस्टिंग टेल है रिलेटेड टू द पर्सन हुम वी ऑल टेंड टू इग्नोर एट ऑल द टाइम्स बिकॉज वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। मैं बात कर रही हूँ माँ की। कहते हैं जब गॉड माँ को बना रहे थे तो बहुत ओवर टाइम किया। किसी एंजल ने उनसे आकर पूछा कि इतना टाइम इस मूरत पर काम क्यों कर रहे हैं, तो गॉड का आंसर था क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि ये इलास्टिक या प्लास्टिक की नहीं है। शी विल बी एबल टू रन ऑन ब्लैक कॉफी एंड लेफ्ट ओवर्स। एक गोद है जिसमें एक साथ बहुत से बच्चे छुप सकते हैं, और वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको मुझे देनी है 3 pairs of eyes। वेल, बात यहीं खत्म नहीं होती है, कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ट्रैक।

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
4: ਜੀ ਹਾਂ, ਯਹੀ ਸੋਚਾ ਥਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਮਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇਂਗੀ 3 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਆਈਸ। अकॉर्डिंग टू गॉड फर्स्ट पेयर था बंद दरवाजे में से भी देख पाने के लिए। जब वो सोचती हैं, वो पूछती हैं कि बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं, हालांकि उन्हें पता होता है इसका आंसर। दूसरा पेयर आंखों का दिया उन्होंने माँ को, बेहद बिगड़े हुए बच्चे को भी अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके दिल में देखने के लिए, विच ओनली शी कैन डू एंड नोबडी एल्स। थर्ड पेयर इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पेयर ऑफ आईज। जब एंजल को गॉड ये बात बता रहे थे तो उस मदर के मॉडल में से कुछ बूंद पानी टपका, एंड ऑल गॉड कुड से वाज कि मैंने इन्हें बनाया और इन्होंने आंसू को, आंसू जिसके जरिए ये अपनी खुशी, दुख, दर्द, अकेलापन और गर्व, ये सब एहसास दिखा देती हैं, क्योंकि ये माँ है।

एक पेंसिल मेकर ने पेंसिल को तैयार कर डिब्बे में डालने से पहले उसे कुछ यूं समझाया कि मैं तुम्हें यानी पेंसिल को दुनिया में भेज रहा हूँ, बट कुछ चीजें हमेशा याद रखना। पहली कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत से अच्छे काम कर सकती हो। दूसरी, वक्त बे वक्त जब तुम्हें शार्पन किया जाएगा तो तुम्हें दर्द होगा, लेकिन वो पेन तुम्हें एक बेटर पेंसिल बनाएगा। और तीसरा कि चाहे तुम्हें किसी भी सरफेस पर चलाया जाए, तुम अपना मार्क जरूर छोड़ना और हालात जो भी हो तुम लिखते रहना।

मत माता मत जियो ना मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख्या जन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वडभागी मिल

हर आपे कानो पाईंदा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो। हर आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो। हर सुजान ना भुले मेरे गोविंदा, आपे सतगुर जोगी जियो। आपे जग तो पाईंदा मेरे गोविंदा, हर आप खेलै बहुरंगी जियो। एक ना भोग भोगाईंदा मेरे गोविंदा, एक नगर फेरा।

सगल घटा के अंतरजामी सर्व सुखा सुख साचा ए हो गुर उपदेश मन मैं ले हो जा कहो राम नाम लिव लागी कहो नानक सो धन वड भागी गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा सुन हर कथा उतारी मैल महापुनीत भय सुख सैल वड़े पाग पाया साध संग पार ब्रह्म सो लागो रंग हर हर नाम जब जंतारियो अग्न सागर गुर पार उतारियो रहाओ कर कीर्तन मन शीतल भय जन्म जन्म के किलवख गए सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूंडन काहे कव जाए प्रभ अपने जपे दयाल पूर्ण होई सेव काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूरे ओ सब जाए गुरपूरै सब भरम चुकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी गुआरे री महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बंद लक खरे जे धंधे मैं ओए लपटाए उनते दुगड़ दिड़ी उनमाए ओह बेला का चीतना आवै बिन सजाए ताहूं लपटावै रहाओ आसा बंदी मूर्ख देहे काम क्रोध लपटे वसनेहे सिर ऊपर ठंडो धर्म राए मीठी कर कर बिख्या खाए हों बंदा हों साधो बैर हमरी भूम कौन का लै पैर हों पंडित हों चदर सियाणा करने हरना बुझै बिगाना अपनी गत में ते आपे जाना क्या को कह क्या आख बखाना जित जित लावे तित तित लगना अपना भला सब काहू मंगना सब किश तेरा तू करना हार अंत नाही किश पारा वार दास अपने कौ दी जैदान कबू ना विसरै नानक नाम गौड़ी गुआरे री महला पंजवा आनक जतन नहीं होत छुटारा बहु सियाण पे अगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभ की दरगह सोभा सेत

दिल दे खून दा एक एक कतरा तेरे प्यार दे रंग विच रंगया है। हर सां आउंदिया जांदिया तेरी होंद दा एहसास करवाउंदा है, पर पता नहीं क्यों दिल दी चीज़ यही कहिंदी है कि तू एक दिन बगानी हो जाना। शाह वेले चढ़दे वल टिब्बियां वाले राह ते इंतजार करांगा मैं, बस तू नाल खड़ी जट जमीना जायदादां दे माण नूं हिक दे जोड़ ते तोड़ के दिखा दूँ।

0: सिटी ऑफ विनीपेग दे वाटर मीटर रीडर्स हुन तो लेके अगस्त तक घर घर जानगे मीटर रीडिंग्स लेन ले सवेरे 9 बजे तो शाम 8:30 बजे तक जे असि थोनो मिस कर गए तासी थोड़ी ले एक मीटर रीडिंग रिमाइंडर कार्ड छड के जावांगे और जानकारी ले विजिट करो winnipeg.ca/meter-reading.
1: Who will you meet today?
2: A curious monkey or a playful polar bear?
1: Maybe you'll meet a majestic tiger out for a swim.
2: You could even meet a T-Rex along a forested trail.
1: There's one place where you're sure to meet incredible animals, the Assiniboine Park Zoo.
2: Every visit is a chance to discover, connect, and make a memory together.
1: Looking for a summer adventure right here in Winnipeg?
2: You know what to do.
1: Meet me at the zoo.
2: Plan your visit now.
3: Jim Gauthier Chevrolet, the cornerstone of the Gauthier Auto Group since 1980, provides the selection, price, and experience that customers crave each and every time. Which is why everyone loves a Gauthier deal. Whether you're pre-ordering your dream vehicle from the factory, choosing from the many new Chevrolet or GM vehicles on the lot, picking up a pre-owned, or seeking maintenance, Jim Gauthier Chevrolet has been doing it right the first time for over 40 years. Jim Gauthier Chevrolet, still at 1400 McPhillips.
4: 92.7 FM CKJS welcomes the X back to Exhibition Park.
5: Take part in one of Winnipeg's favorite summer traditions, June 12 to 21st.
4: With exciting midway rides, live entertainment, cultural nights, delicious food,
5: and fun for the whole family.
4: You can experience the sights,
5: sounds,
4: tastes, and excitement on us. Visit CKJS.com now to get your name and to win a pair of tickets for you and a friend.
5: The X returns June 12 to 21st
4: at Exhibition Park.
5: Be there.
4: With 92.7 FM CKJS.
6: 92.7 FM CKJS. Listen live on your mobile device or desktop at CKJS.com. Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
7: ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਜੇ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸੁਣਨੇ ਆ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਸ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਫਸਟ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
8: ਆਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਗਾਣਾ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ
7: ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ
8: ਹਾਂ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਹੈ
7: ਗੁਮਾਨ ਅੱਛਾ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦਾ
8: ਦੋ
7: ਵਜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਂਗ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ
9: ਬਹੁਤ
7: ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਇੱਧਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ
9: ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚ ਵੀ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦਾ
7: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਲੈ ਆਨੰਦ ਬਣਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ
9: ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਲਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
7: ਅੱਛਾ ਸੱਜਣ ਪੁਰਾਣੇ
9: ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਗਾਇਆ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਦਾ ਇਹਦੀ ਦਾ
7: ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਉਡਾਇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹਨਾ
9: ਹਾਂਜੀ
7: ਕੈਸਟ ਦਾ ਹਨਾ ਸੱਜਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ
9: ਹਾਂਜੀ
7: ਓਕੇ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੀ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
10: ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦੇ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਾਲੀਏ
7: ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਾਲੀਏ सुपना होगी पाली ठीक है जी करतार रमले दा जी ओके जी जरूर ला देंगे जी ओके जी धन्यवाद जी धन्यवाद नेक्स्ट कॉलर भी अटेंड कर लेंगे जी रेडियो धमाल तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी
10: हां जी गबी भाई किवें आ
7: चढ़दी कला जी चढ़दी कला
10: भाई है ना एक दिन दो गाने भेजे एक ता अख रविंदर गरेवाल दा
7: हां जी हां जी
10: एक क्लासमेट
7: क्लासमेट ओ मुंडे वाला ही लाउणा जेड़ा तुसी भेजा होया
10: हां जी मुंडे वाला ही लाओ इहदी आवाज भी ओदे वर्गी होई है जिहड़े ओरिजिनल गाया वा
7: ओके बस यही लावांगे पक्का लावांगे
10: ओके ओके
7: ओके धन्यवाद जी लो जी बहुत सारी अपने को लिस्टिंग आ चुकी बहुत सारा तुसी भरमा जा प्यार दे रहे हो मैं तो अज डिफरेंट लैके आया सी मैं चलो सैड सॉन्ग लाने मैंने पता नहीं सीगा कि इन्ना वधिया रिस्पोंस मिलूगा पता तो सीगा रिस्पोंस मिलना है पर इन्ना घेंट मिलूगा मैंने सीगा शायद सारे नचन टप्पन अपना हर रोज़ डिफरेंट करते हैं ना कल हूँ फिर अपना फ्राइडे का शो होगा फिर नचन टप्पन वाला है तो अज थोड़ी जी वाइब चेंज की है पर तुम उन्होंने इंजॉय कर रहे हो मैंने बहुत आनंद आ रहा तो आजो फिर आप उही चीज़ तो रेस के उत्ते पैर रख गए फिर सैड सैड जी तो अज बाला सैड भी नहीं होना कैसे ने इंजॉय करते रहना है तो इश्क का उड़ैड़ा भी आप इंजॉय कर लेना तो गुमान भी तो डॉलर भी सारे सारे आप गाने जो क्लासमेट भी आ चुके अपने को बने रहो जो प्रोग्राम के नाल तो अज तुम प्रोग्राम कि लग रहा तो जरूर दस दौ तो एक वीर का काम दो बजे स्टार्ट होना तो उन्होंने गाँव सुनना डॉलर उन्होंने जरूर सुना दे पवित्र लसोई का तो उस तो पहले तेरे जानकारी थोड़ी जी साझी कर दिए कि स्प्रिंग मेडो क्लीनिक फार्मेसी से पंजाबी हिंदी स्पीकिंग डॉक्टर मिल जाएंगे जी तुम मेल फीमेल डॉक्टर मिल जाएंगे ट्रांसकोनाइज्ड विनीपैग के वॉक इन भी जा सकते हो तुम अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हो तो फ्री सिटी के डिलीवरी भी करते हैं मेडिसन की 1783 प्लेसी रोड यूनिट 19 से संपर्क कर सकते हो जी 204-417-0028 के उत्ते संपर्क कर सकते हो तो रायसीपी अकाउंटिंग वालों बहुत सारिया सेवावान दी जाने बुककीपिंग सर्विस सीआरए ऑर्डर के तुम कोई भी सपोर्ट चाहिए हो जिमन भुल्लर जी ने संपर्क कर लो 13 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस है जी 204-509-0029 से संपर्क कर सकते हो 15 बजे लोगों ने मैन्यू तो विजिट भी कर सकते हो तो आज फिर डॉलर गाना सुनते हैं तो फिर उदू बाद रूबरू होंने जड़िया बैक टू बैक सारिया जरमैशा आई सारियां पूरी कर देनियाँ अब बस सैड सॉन्ग में इंजॉय करना रोना नहीं गा